0: ये नोबली ये अमरा लाथा मसे अमरा ने सब संग में दूंगा
1: मिंगो
2: अमा
1: ते किंजु मचे तंदो पुजिके चोआ याबुचे एक्यूशी
3: Amma,